जंगल के अंदर से एक नल बनाया है। अगर वो पानी का मुहान ही बंद कर देंगे तो ये लोग कितने दिन भूखे प्यासे लड़ेंगे।